0: تو یہ تو ان کو بہت ہی خوبصورت گانا تھا میرا فیوریٹ گانا بھی ہے ان کے گانوں میں 1970 کے دشک میں پانچ ورشوں تک ہر ورش نیرج جی کو سرو شریشٹھ گیتکار گھوشت کیا گیا تھا بمبئی میں فلم انڈسٹری میں پانچ سال تک سرو شریشٹھ کے روپ میں اس کے بعد ان کو لگا کہ ہوتا ہے ڈس الوژنمنٹ مانو پریم کے اس انتم گائک کو پنجڑے میں رکھنا سمبھو نہیں تھا کیونکہ اتنا لمیٹیشن ہو گیا تو وہ علی گڑھ کے تھے وہ اٹاوا کے آپ کے انہیں جنم بھومی کے نیرج جی ہیں
1: ہمارا بھی سمبندھ ہے
0: اچھا اٹاوا سے بتائیے کہ اٹاوا پوروالی کوئی گاؤں تھا وہاں پہ ان کا جنم ہوا تھا
2: زمانہ تھا پردیپ جی
0: تو ان کے سور
2: پتا تھا کہ اٹاوا آج جو ہے نا اناؤنسی کر دیا آپ نے
0: نیرج جی کے سور فلم کے ہیرو کی نہیں ان کے ہردے کی آواز تھی فلمی دنیا میں ان کا ویوسائک روپ نہیں بلکہ ایک چنوتی تھی جس کا سفل سماپن کر وہ چار ورشوں کے بعد علی گڑھ لوٹ آئے انہوں نے کہا اب پانچ سال تک چھٹے سال بھی انہیں کو ملنے والا تھا تو انہوں نے کہا اب نہیں ہوگا تو وہ علی گڑھ واپس آ گئے تھے چار سال کے بعد میں اس لبدھ پرتشٹھت ورشٹھ کوی کا جنم 4 جنوری 1925 کو اٹاوا کے پوراولی گرام میں ہوا تھا
1: اچھا اچھا
0: پوراولی گرام میں تو نہیں آپ کے تو بھائی ہو گئے
1: چاچا جی شیلجا جی دیکھیے اگر ہم کوشش نہ کر رہے ہیں تو یہ کارکرم آپ نیرج جی کے ہی گیت گاتی رہیں گے
0: بتاؤں میں آپ کو آج ہمارا بڑا سوبھاگیہ ہے کہ ہمارے بیچ میں دو اتنے جانے مانے سڈنی کے جانے مانے ویکتی موجود ہیں کہ میں آپ سے آپ کو وجندر جی ان کا تو انٹروڈکشن جو ہے بالکل دینا مشکل ہے بہت ہی مشکل ہے پنکج جی ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ میں وجندر جی ہیں ہمارے ساتھ میں ہیں دونوں کا جو یوگدان ہے آشا گروپ میں وہ ہمیشہ ہمیشہ سورن اکشروں میں لکھا جائے گا وجندر جی ہم آپ کو ہردے سے اپنے ہاردک شبھ کامنائیں دیتے ہیں آپ کو بدھائی دیتے ہیں کہ آپ کو ریسنٹلی آرڈر آف آسٹریلیا دیا گیا تھا اور ویل ڈیزرونگ سب سے زیادہ ڈیزرونگ کیوں آپ کا میں نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے آپ پریشرم کرتی ہیں جس طرح سے آپ دونوں کا پنکج جی کا آپ کا جو ڈیڈیکیشن ہے اور آپ کی اور اتنی ہیوملٹی میں نے دیکھی ہے کہ پنکج جی کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ میں ایک بار ان کی جو بہت بڑی ان کی پرنٹنگ پریس ہے وہاں میں گئی تھی تو ان کو میں نے جب پارکنگ کرنے میں دقت ہو رہی تھی تو باہر یہ کھڑے ہوئے تھے مجھے لگتا کہ یہ یہاں پہ گارڈ ہے جو کہ میں نے کہا کہ وہ تو بڑی کرسی میں بیٹھے ہوں گے پنکج جی اندر ڈائریکٹر ہیں وہ تو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں اندر بیٹھے ہوں گے لیکن انہوں نے ہم سے کہا کہ ادھر پارک کیجیے ادھر پارک کیجیے مجھے لگا کہ یہ اٹینڈنٹ ہے یہاں پر پھر اس کے بعد میں نے کہا ان کے آفس میں لے چلیے آفس میں دیکھا تو خود ہی تھے یہ تو اتنے ہمبل کہ تو یہ بتائیے کہ آپ آشا گروپ میں آپ دونوں کا انوالومنٹ کیسے ہوا ہے
3: سب سے پہلے تو یہ شیلجا جی اور جو ایف درپن ریڈیو کے جو آرگنائزرس ہیں اور سننے والوں کو بہت بہت نمسکار ہے ہمارا اور بہت بہت آپ کا شکریہ جو آپ نے اتنے بڑے بہت بہان لفظ بولے ہیں اس کے لیے ہم آپ کے آبھاری ہیں پر اتنا ڈیزرو نہیں کرتے ہم تو سیدھے سے سمپل سے لوگ ہیں جو کہ اپنے دل سے اپنے سینئرس کو سرو کرتے ہیں اور ان کو وہ ہوپ دیتے ہیں آشا کا میننگ ہی ہوپ ہے ہوپ مینس ہوپ کہ جو اپنے مائگریٹڈ کنٹری میں آ کے اپنا پن فیل سکے اپنی کلچر سے جڑ سکے اپنے لوگوں سے مل سکے اپنا میوزک انجوائے کر سکیں یہ ہوپ کہ جو ہمارا بڑھاپا ہے وہ اپنی کلچرلی اپروپریٹ ایکٹیویٹی سے چلے سو یہی ہمارا مقصد ہے آشا میں
1: بہت اچھا مقصد ہے آپ کا پنکج جی آپ بھی کچھ آئیے مائکروفون کے پاس آ جائیے اور بولیے کچھ آپ کا کیا کہنا ہے
4: آپ کو نمسکار آپ سننے والوں کو بھی نمسکار
1: جب مائکروفون کے پاس آ جائیے ایک دم
4: میرا نام پنکج ہے میں سب لوگوں کو نمسکار کرنا چاہوں گا سب سننے والوں کو بھی نمسکار کرنا چاہوں گا میں ابھی ریسنٹلی ہی آشا میں جوائن ہوا ہیں قریب میرے کو 3 سال ہو گئے ہیں اور میں جب میں پہلی بار آیا تھا تو مجھے ایک ایسا لگا کہ اس سے اچھا تو میری زندگی میں مقصد کچھ ہو نہیں سکتا اور میں نے کہا نہیں اسی میں مجھے کرنا ہے اور میں نے کہا یہ جو دھن ہم کماتے ہیں ये सिर्फ हम हमारी इसकी भूख कभी खत्म नहीं होगी वो तो कमाते ही रहेंगे लेकिन जब हम मैं यहां जुड़ा तो मुझे तो लगा जैसे मुझे सबसे अच्छा मकसद मिल गया है और मैं चाहता हूं हम इसको आगे बढ़ाएं और आप सब लोगों की हमारे हमें इनकी आप हमें मदद कीजिए कि हम कैसे आगे बढ़ाएं और जितना भी हम कर सकते हैं हमारे जितना जान हम करेंगे
1: पंकज जी आप ये बताइए हमें कि आप खाते क्या हैं वैसे तो आप सीनियर से जुड़े हुए हैं लेकिन 25 साल के लगते हैं
4: देखो मैं खाता बोर्ड को छोड़ आप जब भी खिलाएंगे हम खाएंगे
0: चलिए पंकज जी आप ये बताइए कि आप कहां से आए कब कब कितने दिनों से ऑस्ट्रेलिया में हैं कहां से और आपकी जो प्रिंटिंग कंपनी है उसके बारे में बताइए
4: मैं 1994 में ऑस्ट्रेलिया में आया था और मैंने 1999 में प्रिंटिंग का बिजनेस शुरू किया था
0: अच्छा
4: और मेरा जन्म दिल्ली में हुआ था इंडिया न्यू दिल्ली इंडिया में और मैं तब टाइम्स ऑफ इंडिया में जॉब करता था और जब मैं 94 में 1994 में यहां पे आया तो जैसे हम लोग शुरू में मेहनत करते थे तो हमने भी वही सब मेहनत की है यहां पे रेस्टोरेंट में बर्तन भी धोए हैं और अभी भी घर पे धो ही रहे हैं
3: ये तो आशा में भी धोते
0: हैं लगता है घर में भी आपको धुलवाए जाते होंगे हैं आपको भी धुलवाया जाता होगा घर में
4: वो मैं अपनी इच्छा से करता हूं
3: वॉशिंग मशीन में बैठ जाते
1: हैं नहीं बड़ा अच्छा करते हैं अच्छा हम विजेंद्र जी आपके बारे में वैसे तो सबको अच्छी तरह से पता है आप भी बताइए कि आप भारत में कहां से हैं और आपने भारत में क्या किया और यहां पर कब आई
3: अगर ये बताऊं तो मेरे को ये 75 में आई थी
1: अच्छा
3: तो यहां पे न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी में पीएचडी एजुकेशन में एडमिशन लिया था
1: अच्छा
3: और उसके बाद मैं
1: मोर कौन से सब्जेक्ट में
3: एजुकेशन और बहुत लकली जो ये कहानी है तो बहुत सी है माइग्रेंट स्टोरी के अगर करने लगे तो कभी-कभी लगता है कि किताब की किताब लिख सकते हैं तो अभी नए-नए यंग होते हैं तो सोचते हैं कि इंडिया से आए हैं मास्टर्स फर्स्ट क्लास में ऑनर्स में किया हुआ है वहां पे तो प्रिंसिपल थे तो अपनी साड़ी डाल के और झुमके डाल के जो 25 साल का आदमी होता है कि चलते हैं तो बोला कि वो सेंट्रल लिंक में आपकी तो एजुकेशन बहुत ज्यादा है उस वक्त ऑस्ट्रेलिया का बहुत सिस्टम था मल्टीकल्चरलिज्म नहीं था तो एक बार हमने जा रहे थे ट्रेन पे तो स्टेशन पे हिंदुस्तानी को देखा पीछे पीछे भागे अरे भाई रुक जाओ सरदार जी रुक जाओ बात करिए तो इंटरव्यू से मैंने कहा कि सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड में इंटरव्यू देखा तो हमने बोला कि मैं चंडीगढ़ से आई थी तो हमारे पास तो मास्टर्स ऑनर्स में है अच्छे-अच्छे रेफरेंस है तो क्यों नहीं जॉब में जाते हैं तो अभी भी याद है 12 आदमी बैठे हुए थे और हम अपनी साड़ी डाल के बीच में बैठे तो एक तो ऐसे देखने लगे कि पता नहीं कहां से आए हैं एलियन लैंड से आए हुए हैं तो उन्होंने इंटरव्यू करते लगे तो हमने कहा ठीक है तो अभी भी मेरे को याद है पहला क्वेश्चन था कि आपकी क्वालिफिकेशन तो बहुत अच्छी है पर आपको यहां के बच्चों का कैसे पता चलेगा तो जब आदमी जवान होता है ना तो बोल्ड भी बहुत होता है अभी ओल्ड भी ज्यादा बोल्ड बूढ़े होकर और भी ज्यादा बोल्ड हो जाते हैं तो हमने उनको बोला कि ये बताइए कि जो लोग हैं दूसरी साइड पे हेमिस्फीयर के उनका दिमाग अलग होता है तो वो मेरा देखने लगे तो मैंने सोचा आप तो बैग पैक करके प्लेन में बिठा के भेज देंगे दो दिन बाद फोन आया तो कहने लगा You are the lady who told us off. तो मैंने कहा ठीक है मैंने ठीक ही बोला था तो आप आइए मेरे ऑफिस में तो मैंने कहा होगी छुट्टी होगी अब तो मुझे पीछे और हम भागे चंडीगढ़ तक भागते पहुंच जाएंगे तो उन्होंने हमें पहली जॉब दी एजुकेशन डिपार्टमेंट एज ए स्पेशलिस्ट टीचर सो दैट वाज द बिगनिंग ऑफ द जर्नी ऑफ माय लाइफ फॉर मोर देन 40 इयर्स एजुकेशन में एज स्पेशलिस्ट असिस्टेंट प्रिंसिपल even officiated as principal karke fir pata nahi budhape mein kaise buzurgon ka khayal aa gaya jab thode se baal safed hue to socha ki ab usko chodo socho ki buzurgon ka kuch karna chahiye to wo shuru mein to humne jab aasha start ki to aasha ka jo sanskrit meaning hai hope jo main jaise pehle bataya hai to humne dekha ki jo hamare buzurg log ho rahe hain unke liye shuru kiya par jaise jaise time badhta raha especially covid mein कोविड से पहले शुरू किया था तो हमें इस बात का बहुत फर्क है ये मैं नहीं हूं ये जो वो लोग मेरे साथ चलते हैं हमारे कितने ही वॉलंटियर्स शैलजा जी देखा होंगे वॉलंटियर हैं जो कम्युनिटी है हमारे सीनियर जिनको हमारे पे ट्रस्ट है जो हमें सपोर्ट करते हैं तो हमने वो पहला था एक फोरम किया डिमेंशिया पे फिर सीनियर राइट्स पे हमने तीन चार फोरम किए और जो पार्लियामेंट इंक्वायरी एल्डर व्यूज में तो मेरे को याद है 12 घंटे में बैठी रही रिसर्च करने के लिए आर्टिकल लिखने के लिखना तो आता नहीं था पर उस वक्त ये चैट जीपीटी नहीं होता था नहीं तो आसान हो जाता है पर तो, तो करके तो हमने पार्लियामेंट इंक्वायरी में वो सबमिशन फर्स्ट टाइम इंडियन किया तो एक्सेप्टेड हुआ उसके बाद करते करते तो सीनियर राइट्स में तो फोरम भी किए देन वी रियलाइज कि एल्डर अब्यूज के साथ डिमेंशिया के साथ सबसे जो है पैसे की नहीं होती जरूरत एक टाइम आता है लोनलीनेस अकेलापन
0: बिल्कुल
3: अपनापन
0: बिल्कुल ओके
3: दिल करता है कोई बात करे कोई इतना ही कह दे कि आप कैसे हैं आपको प्यार से बोले तो उसी से जो है वो जो खजाना बहुत जरूरी है तो एक ग्रुप हमने शुरू किया एक के बाद फिर कहते जी दूसरा शुरू करो वहां पे जरूरत है अब करते करते हमारे हर महीने 9 ग्रुप चलते हैं क्रूजनेस से चलते हुए वेस्ट राइड में पहुंचते हैं गोल्डन पहुंचते हैं फिर रोजिल में लिवरपूल में अभी सेटेड में हुआ था दो ब्लैकटन में चलते हैं वेंटवर्थविल में और अभी उम्मीद कर रहे हैं कि स्ट्रैटफील्ड में एक और नया नेक्स्ट ईयर चलेगा
1: बहुत अच्छा कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं ये तो जरूरत है हम लोगों की और ये लोनलीनेस है ये बड़ा एपिडेमिक है और इससे आदमी के कि हर बात पर फर्क पड़ता है स्वास्थ्य पर फर्क पड़ता है
0: बिल्कुल
1: मेंटल फर्क पड़ता है ऐसे शैलजा जी ज़्यादा अच्छी तरह बताएंगे
0: ये कि एक अमेरिका में एक स्टडी हुई थी उस स्टडी में उन्होंने 60 प्लस लोगों को दो उसमें डिवाइड किया था तो एक जो लोग थे वो लोग तो चले गए थे अपने फ्रेंड्स के साथ में कहीं घूमने के लिए और सब कुछ जैसे आप क्या है कि गाने पुराने गाने उन्हीं में लोगों को इतना उत्साह लगता है मैंने देखा है किस तरह से लाइवली हो जाते हैं लोग तो ये जो दो ग्रुप थे एक जो ग्रुप था वो घर में ही रहा दूसरा ग्रुप जो था पिकनिक एक हफ्ते के लिए छुट्टी पे गए थे तो उन्होंने देखा कि इस स्टडी में इतना बड़ा डिफरेंस था दो लोगों में जो लोग एक हफ्ते के लिए हॉलीडेज के लिए गए थे उनकी जो टेम्परमेंट था वो उनका जो लेवल ऑफ मूड था वो उनसे कहीं ज़्यादा था कि जो लोग घर में बह रहे थे तो आपने जो काम किया है ये तो बिल्कुल इंडिस्पेंसिबल है कि और मैंने देखा है कि कितना लोगों में उत्साह रहता है कि हर किसी को लगता है कि आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर यानी हर उम्र के लोग उस खड़े हो के और उसमें ठुमकते हैं तो ये
3: देखिए ठुमकने की बात जब 91 ईयर ओल्ड का इंसान जो कहता है कि मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है कि मेरे बाजू में दर्द हो रहा है जब वो गाना कभी कभी मैं वीडियो में वो फेसबुक में करती हूँ तो बाद में देखती हूँ पहले ऐसे बैठे होते हैं फिर थोड़ा सा हिलते हैं फिर थोड़ा सा उठते हैं फिर आके फ्लोर में
0: फिर भूल जाते हैं है,
3: फिर बाद में नाचने लगते हैं तो वो जो खुशी मिलती है तो ये हम गाना नहीं है उनके साथ ये मेमोरीज क्रिएट करते हैं उनको एक मकसद मिलता है रिकॉग्निशन मिलती है कि हम वैल्यूड हैं और उनको कल्चर से कनेक्ट होता है जो माइग्रेशन के बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं अपने घर को छोड़ना अपनी फैमिली रिश्तेदार अरे इंडिया में तो वो सब्जी वाला भी बातें करता है
0: बिल्कुल
3: माई आती है सारी सारी सारा समाचार देती है गॉसिप सब बता देती है अरे यहाँ पे तो अपने बच्चे के घर में भी तो फोन करके जाना पड़ता है
0: बिल्कुल
3: अरे प्राइवेसी कहीं हमारी प्राइवेसी खत्म ना हो जाए
0: बिल्कुल
3: तो कल्चरल शॉक तो है पर जो कल्चर वही होती है जिस वो खाना जो जिससे हम बचपन से खाते हैं जो गाना सुनते हैं
0: बिल्कुल
3: जो हमारे फेस्टिवल्स हैं हमारे कल्चर है तो वो भूलते तो नहीं है तो इसके लिए जो आशा में आके यही करते हैं कि एक तो ये है कि नो रिलीजन नो पॉलिटिक्स आइए मस्ती करिए तो कभी कभी लोग कहते हैं हम भजन करें कीर्तन तो मैंने कहा जी गुरुद्वारे में चले जाइए बड़ा अच्छी बात है हम भी जाते हैं संडे को जाते हैं
0: और क्या बिल्कुल
3: पर यहाँ पर आके आपको वैल्यू होनी चाहिए अपनी जो दिल करे कोई जज करने वाला नहीं है और अभी बहुत अच्छा लगता है जबकि हमारे सीनियर्स जो टेम्प्रेरी आते हैं बच्चों के पास कभी कभी चार बार आते हैं कुछ साल बाद कहते हैं कि अब जाने को दिल नहीं करता तो इससे ज़्यादा और कॉम्प्लीमेंट क्या
1: बिल्कुल, सकता है बिल्कुल,
3: कहते आशा में आते हैं
0: बिल्कुल
3: तो इसीलिए हमारा एक जो है ऑनलाइन संडे को 4:30 बजे होता है लास्ट संडे में जिसमें कि अजमेर में एक पूरा ग्रुप है वो हमारा ग्रुप अजमेर में भी है
1: अच्छा।
3: वो जो आर्टिस्ट हैं वहाँ से गाते हैं
0: बिल्कुल
3: जो सीनियर यहाँ से चले जाते हैं लास्ट मीटिंग में चंडीगढ़ से अजमेर से इंदौर से गुजरात से तो ग्लोबली पीपल जुड़ जाते हैं
1: बहुत अच्छी बात है और ये तो मल्टी नेशनल प्रॉब्लम है जिसका आपने सॉल्यूशन ढूंढा है बहुत अच्छी बात है आशा है कि आपका आपके इस मुहिम का प्रचार प्रसार और अधिक हो और बहुत अच्छा रहे तो आपसे बात जारी रहेगी लेकिन इसी बीच में हमारे पास रंजना जी ने एक और वार्ता भेजी है
0: ठीक है
1: हम उसे सुन लेते हैं
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: अभी जो मोदी जी का विजिट हुआ था कई कंट्रीज में उसके बारे में है
0: जब तक आप लगा रहे हैं विजेंद्र जी आपके कितने मेंबर्स होंगे कुल मिला के नौ तो आपके सेंटर्स हैं लेकिन
3: मेंबर्स को अगर काउंट करने लगे तो हजारों में भी कह सकते
0: हजारों में भी अच्छा
3: हर महीने हाँ। जो हम ग्रुप में करते हैं अभी जो व्हाट्सएप का ग्रुप है 350 से ज्यादा वो है ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भी 300 ज्यादा लोग हैं और जो लोग आते हैं उनका नाम हर रोज भी नहीं भी लिखा हुआ जो इवेंट में भी आते हैं मोर देन 400 फेस टू फेस हमने मील्स होते हैं और 1000 कप्स ऑफ टी हर महीने उससे ज्यादा हो जाते हैं तो इसका मतलब वो इतने मेंबर चले गए जो फेसबुक में जो नहीं आ सकते कुछ बुजुर्ग हैं अपनी मोबिलिटी के लिए हेल्थ के लिए डिस्टेंस के कारण करके नहीं आते वो कहते हैं कि जब आपका फेसबुक में होता था वो ज्वाइन करते हैं वो सपोर्ट करते हैं तो मोस्टली जो है 1 मिलियन तक फेसब्यू हर महीने होता है तो इसका मतलब है हमारे इतने 1 मिलियन मेंबर्स हैं ना मेंबर्स के लिए कोई स्टैंप तो नहीं लगानी होती
0: बिल्कुल
3: सपोर्ट करते हैं फॉलो करते हैं कुछ लोग फिजिकली आ सकते हैं कुछ नहीं तो ये नहीं कि सब बुजुर्ग ही हैं जो सबसे छोटा जो है 5 साल से बच्चा है और ओल्डेस्ट अवर जो आके अभी तक आते हैं 92 तक
1: बहुत बढ़िया अच्छा ये बताइए कि आप इतना बड़ा मुहिम चला रही हैं तो फंडिंग कहाँ से होती है
3: फंडिंग तो देखिए वो कहते हैं ना कि कभी कभी हम सोचते हैं कि आशा को आशा देवी बना लेना तो फंडिंग का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा फिर अपना वहाँ बैठ के तो फिर फंड आते रहेंगे फंडिंग की तो देखिए सबको प्रॉब्लम होती है हम लोग काम भी करते हैं बजट होता है फिर भी कम हो जाता है फंडिंग का इशू है पर मैं सोचती हूँ कि अगर देखिए इट मे बी डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल डिफरेंट वे से करते हैं मेंबर्स की मेंबरशिप तो $50 है लेस देन $1 ए वीक तो उससे कुछ नहीं बनता अभी हमारा सैटरडे को लिवरपूल का हब था 3 घंटे के $430 दिए हैं इसलिए कि वहाँ पे ज़रूरत है चाहे महंगा है या कैसे अब खाना भी है आपको मालूम है कि छोटा सा राइस और करी लेंगे तो $10 में कुछ नहीं बनता और हम लोग ज़्यादा अच्छा खाना इसलिए देते हैं कि खाना इट्सेल्फ इज़ एक्टिविटी शेयरिंग फूड बहुत प्लेयर है अब आप अपने आप को इमेजिन करिए कि आपके बच्चे यहाँ रहते हैं आप भाई हैं तो हर कोई बजट के हिसाब से शॉपिंग करता है
0: बिल्कुल
3: तो आपका दिल करता है कि मैं ये बना के पराठा खाऊं या कुछ और बच्चे तो पास्ता सा बना के उसमें थोड़ा सा दे दिया अब बुजुर्ग क्या बोलेंगे मेरे को और खाना है बोलेंगे मम्मी डैडी आप मत ये खाइए सो जहाँ पे हम उनको हेल्थी फूड देते हैं पर जितना मर्जी दिल करके सो कहने का मतलब है मुश्किल तो होता है हर बार सामान लेके जाना आर्टिस्ट होते हैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट को बुलाना पड़ता है सब तो अभी तक तो वो कहते हैं ना कि भगवान का मिरेकल है यस वी डू राइट ग्रांट्स एक ग्रांट को लिखने के लिए 30 अगर क्वेश्चन है तो आप सोचिए कम से कम 12-13 घंटे लगेंगे रिपोर्ट में भी 10 घंटे लगेंगे पर हम लोग गिव अप नहीं करते यस इन बिटवीन मिलती है कभी पर जैसे लोग बोलते हैं अरे जी गवर्नमेंट ग्रांटें देती है तो मैं कहते हैं ठीक है आपके पास चाबी है खजाने की तो हमें दे दीजिए शायद आपको दे गए होंगे तो वी डू गेट सम ग्रांट्स और जो वेरी फ्यू डोनेशंस हमारे पास टैक्स डिडक्टेबल है तो हम यही चाहते हैं कि कम्युनिटी में फॉर एग्जाम्पल अब रेस्टोरेंट वाले हैं चाहे वो ब्लैक टाउन है राउज हिल है वेंटवर्थ महीने के में एक बार भी अगर एक बकेट राइस की एक दाल और सब्जी में तो कोई फर्क नहीं पड़ता
1: बिल्कुल
3: अगर वो सपोर्ट कर दे तो हम उनको जो टैक्स डिडक्टेबल अगर फाइनेंशियल करें रसीद दे सकते हैं और हमारा काम भी आसान हो जाएगा सो हम चाहते हैं कि कम्युनिटी टू कम अलोंग ये सब मिलके करेंगे तभी आगे बढ़ेगा ये हमारा नहीं हमारी तो ये है कि जनरेशन्स के लिए जो हमने शुरू किया आगे बढ़ता जाए अब पंकज जैसे यंग और लोगों को इसीलिए करते हैं कि आप लोगों ने आगे चलाना है तो हम अपना पूरा टाइम लगा के एडमिन में पूरा कर रहे हैं स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि हम हो ना हो पर चलता जाए आशा बढ़ता जाए आगे।
1: नहीं बहुत अच्छी बात है, और ये है कि हमारी तो अपने श्रोताओं से गुजारिश होगी कि भाई जितना डोनेशन दिया जा सके अच्छी अच्छी संस्थाओं को, जैसे कि आपकी संस्था है आशा है, आशा मैंने कहा आपकी संस्था है लेकिन हम सब की संस्था
3: हमारी है,
1: हम सब की है
3: हमारी आशा, नाम भी हमारे ग्रुप का है हमारी आशा।
0: बिल्कुल, हमें आशा है कि हमारे जितने भी लिसनर्स हैं सब आपको सपोर्ट करेंगे, और इतनी अच्छी सर्विस है तो आप उसको उसका फायदा भी उठाइए,
1: फायदा उठाइए। अच्छा, इसी के साथ साथ अब मोदी जी की यात्रा के बारे में।
0: हाँ बिल्कुल, आप उनका बताइए।
5: तो श्रोताओं, जैसा कि हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशिया पैसिफिक की यात्रा पर थे। मैं यानी रंजना रमन आपके साथ उस वार्ता के कुछ मजेदार और कम बात की गई पहलुओं पर आपके साथ चर्चा करूंगी। एशिया पैसिफिक की धरती पर इस बार कुछ अलग ही माहौल था। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान उतरा, ऐसा लगा मानो किसी देश ने अपने VIP वाईफाई का पासवर्ड ही बदल दिया हो और उसे कर दिया हो मोदी आया 2026। हर जगह कैमरे, हर जगह भीड़ और हर जगह वही पुराना सवाल, मोदी जी आज क्या नया करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। रक्षा, व्यापार और मोदी मैजिक। मेलबर्न में आयोजित ऑस्ट्रेलिया इंडिया समिट में दोनों देशों ने रक्षा और समुद्री सुरक्षा पर बड़े समझौते किए। ज्वाइंट मैरीटाइम सिक्योरिटी रोड मैप को मंजूरी मिली, यानी हिंद महासागर में दोनों देश अब और करीबी सहयोग करेंगे। भारतीय समुदाय ने मोदी का स्वागत ऐसे किया जैसे IPL फाइनल में आखिरी ओवर चल रहा हो। कुछ विवाद भी हुए, जैसे कुछ विपक्षी नेताओं ने कहा कि यह यात्रा अत्यधिक प्रचार वाली थी। मीडिया ने यह भी चर्चा की कि रक्षा समझौते चीन को चुभ सकते हैं। अब बात करते हैं जापान की। टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और मोदी सुशी मोमेंट। जापान में PM मोदी ने सेमीकंडक्टर सहयोग, AI और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर बड़े समझौते किए। जापानी कंपनियों ने भारत में निवेश बढ़ाने का वादा किया। एक कार्यक्रम में मोदी ने कहा, भारत और जापान की दोस्ती उतनी ही मजबूत है जितनी आपकी सुशी की चावल की पकड़। जापानी मीडिया ने इसे क्यूट डिप्लोमेसी कहा। कुछ विश्लेषकों ने सवाल उठाया कि भारत की सेमीकंडक्टर नीति अभी भी शुरुआती चरण में है और वादे ज्यादा और जमीन पर काम कम हो रहा है। बात करते हैं इंडोनेशिया की। समुद्री सुरक्षा और सांस्कृतिक कनेक्शन। भारत और इंडोनेशिया में समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद रोधी सहयोग और व्यापार बढ़ाने पर चर्चा की। बालिनी कलाकारों ने मोदी का पारंपरिक नृत्य से स्वागत किया। इंडोनेशिया के कुछ स्थानीय समूहों ने कहा कि भारत को पाम ऑयल आयात पर अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए। फिजी, छोटा देश बड़ा दिल और भारत की सॉफ्ट पावर। फिजी में मोदी ने क्लाइमेट रेजिलियंस, डिजिटल कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य सहयोग पर बात की। भारतीय समुदाय ने भंगड़ा और फिजियन नृत्य का मिश्रण पेश किया जिसे मीडिया ने फिजी फ्यूजन का नाम दिया। कुछ आलोचकों ने कहा कि छोटे देशों में भारत की सक्रियता चीन के साथ प्रतिस्पर्धा का हिस्सा है। पापुआ न्यू गिनी, रणनीतिक साझेदार। भारत ने फूड सिक्योरिटी, तकनीक और ऊर्जा सहयोग पर समझौते किए। PM मोदी को पापुआ न्यू गिनी के पारंपरिक सम्मान से नवाजा गया। विपक्ष ने कहा कि भारत को पहले घरेलू कृषि संकट पर ध्यान देना चाहिए। आइए जानते हैं इस यात्रा का सबसे मजेदार पहलू। हर देश में मोदी के भाषणों में स्थानीय भाषा के कुछ शब्द शामिल थे और हर बार भीड़ खुश हो जाती थी। सोशल मीडिया पर एक मीम वायरल हुआ, मोदी जी जहां जाते हैं वहां की भाषा में नमस्ते बोलना नहीं भूलते और फिर वहां की जनता उन्हें नहीं भूल पाती। कुछ विवाद भी चर्चा में रहे। कुछ अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों ने कहा कि भारत की विदेश नीति अमेरिका चीन तनाव के बीच बहुत सक्रिय हो गई है और यह यात्रा उसी रणनीति का हिस्सा है। कुछ आलोचकों ने कहा कि यात्रा में अत्यधिक इवेंट मैनेजमेंट था। समर्थकों ने कहा कि यह भारत की वैश्विक छवि को मजबूत करने का एक तरीका है। कुल मिलाकर यात्रा कैसी रही? रणनीतिक रूप से मजबूत, मीडिया में हाई विजिबिलिटी, भारतीय समुदाय में अत्यधिक उत्साह, कुछ विवाद और कुछ प्रशंसा, और हाँ, मीम्स की भरमार। धन्यवाद।
6: Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund accounts and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention the Open Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Dirpin Radio.

0: Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops.
1: ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश
2: श्रोताओं आपको ये लगा होगा कि आशा का जो मुखड़ा है वो तो बिजेंद्र जी हैं कि आशा को आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं बगैर बिजेंद्र जी के मुखड़े के लेकिन उनके पीछे जो सपोर्ट ग्रुप है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो कहते हैं ना कि अनसंग हीरो तो उनके साथ जो अनसंग सबसे इम्पोर्टेंट हीरो हैं वो पंकज जी हैं कि मुझे लगता है हर तरह से वो सपोर्ट करते हैं उनका भी कमिटमेंट अनकंडीशनल है और उतना ही है और वो दोनों जो हैं पैशनेट पैशनेट अबाउट आशा विजेंद्र जी मैंने ये देखा था कि श्रीलंका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आपके उसमें आती है अक्सर
3: हाँ जी उनके साथ जो सालिया जो हैं वो श्रीलंकन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं
2: जी
3: और गोल्डन वाटर ग्रुप है
2: yeah.
3: तो उनके कोलैबोरेशन से हम मिलके प्रोग्राम करते हैं वो हमारे प्रोडक्शन डायरेक्टर भी हैं चार प्रोडक्शन डायरेक्टर हैं
2: राइट
3: और हमारे चार डायरेक्टर भी हैं बोर्ड में तो जो सेकंड ब्लैक टाउन का जो है अभी जो नेक्स्ट ट्यूसडे में होगा ट्यूसडे में है सीनियर ग्रुप वो श्रीलंकन ग्रुप है तो क्योंकि हमारा कल्चर तो सेम है
2: जी
3: सो हम तो चाहते हैं कि और लोग भी और ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ जुड़ें ताकि उनके लिए भी उनकी मदद से ही उनकी हेल्प से सर्विसेज ज़्यादा दे सकें
2: जी
3: ताकि जो जो सबका बुढ़ापा है माइग्रेटेड कंट्री में सच ए ब्यूटीफुल कंट्री ऑस्ट्रेलिया तो किस कंट्री में आप बाहर से आके और आपको इतना मान मिलता है
2: हाँ।
3: तो बहुत ग्रेटफुल हैं जो हमारे बच्चे सेटल हुए हैं हम लोगों की मान मिलता है हमें मदद मिलती है अगर हमारी कम्युनिटी जो साथ में आ जाए तो ये जो है कि ये बुज़ुर्गों को नहीं है बच्चों को भी हेल्प होगी अगर आपके माँ बाप और आपके अंकल आंटी मालूम है कि वो हैप्पी हैं तो आप भी खुश होंगे
2: बिल्कुल
3: तो अपने
2: बिल्कुल।
3: काम में अपना टाइम लगा सकेंगे नहीं तो उनको देखेंगे या अपना काम करेंगे
1: विजेंद्र जी आपने कहा कि अगर और संस्थाएं भी साथ में आ जाएं तो अच्छा रहेगा आप दर्पण रेडियो को भी अपनी अपनी आशा से जोड़ लीजिए
3: थैंक यू जी बिल्कुल ये तो हमारा बहुत सौभाग्य होगा तो वी विल लव टू हैव यू अलोंग एज आवर पार्टनर तो अभी हमारी वेबसाइट का अपग्रेड हो रहा है सो वी विल पुट ऑल द सपोर्टर्स तो डेफिनेटली और उम्मीद करते हैं कि आपके साथ आपसे मिलते जाएंगे और आपके स्रोतों को मिलते जाएंगे जिनको देखा नहीं पर फिर भी लगता है कि बहुत देर से जानते हैं
1: और समय समय पर हमारे कार्यक्रम में भाग लेती रही है और इसके साथ साथ आपका जो कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में हमें बताती रहिए कहाँ पर क्या हो रहा है तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा और हमारे श्रोता भी आपसे जुड़ेंगे तो आप अभी आपके कौन कौन से कार्यक्रम होने जा रहे हैं
3: देखिए जी सैटरडे में अभी लिवरपूल हुआ था ट्यूसडे में जो श्रीलंकन सीनियर्स ग्रुप है ब्लैक टाउन में वेस्ट पॉइंट में लेवल फोर में कम्युनिटी सेंटर में 11 to 2 थर्सडे को है राउज हिल मेट्रो के $2.50 दो और एयर कंडीशन मेट्रो में बैठ के 15 मिनट में वहाँ पहुँच जाते हैं और ब्लू स्काई के अंदर आप वॉक करके फाउंटेन सा बाहर का देखेगा लिफ्ट लेके ऊपर आइए 11 to 2 राउज हिल में है वहाँ पे योगा होगा बॉली फिट होगा गाना होगा और चाय के साथ आपको बिस्किट और स्नैक्स भी मिलेंगे और गरम गरम राइस बने हुए और अब सिंपल लंच भी मिलेगा
1: ये बॉली फिट क्या होता है
3: बॉली फिट इसलिए हमने किया है कि हम लोग ना एक्सरसाइज कम करते हैं हम योगा तो कर लेते हैं ब्रीदिंग वो भी बहुत ज़रूरी है पर जो बॉडी है जिसको नहीं यूज़ करेंगे ना वो पार्ट बेकार हो जाते हैं तो उनको मोटिवेट करने के लिए हमने सोचा कि म्यूज़िक बहुत पावरफुल है चाहे वो डिमेंशिया हो या कुछ और मेंटल हेल्थ तो इन ए वे मेंटल हेल्थ तो म्यूज़िक के साथ जो है हम एक्सरसाइज करवाते हैं सो बॉली फिट फिटनेस का प्रोग्राम हमने यूनिक हमने स्टार्ट किया था पर बहुत अच्छा लगता है कि फेसबुक में देखते हैं इंडिया में भी यहाँ भी जो जितने ग्रुप हैं उन्होंने करना शुरू किया
2: हाँ,
3: तो हमें तो बड़ी खुशी होती कि कुछ अच्छा काम करते हैं तभी कॉपी करते हैं ना
1: बिल्कुल बिल्कुल
3: तो अच्छी बात है
2: तो श्रीलंकन के अलावा आपने फिजी और नेपाल के जो एसोसिएशन उनसे भी कोलैबोरेट हाँ, किया है
3: पंकज जी आप बताइए
2: हाँ बताइए पंकज जी
4: हम ने अभी नेपाल के जो हैं मिस्टर जो सब प्रोग्राम करते हैं उनका नाम गुरदबंग है
1: थोड़ा माइक्रोफोन के पास
4: है नेपाल के जो सीनियर एसोसिएशन का करते हैं वो गुरदबंग जी हैं वो हमारे एरिया में वो भी इस तरह हम उनके साथ में जुड़ के कर रहे हैं
2: जी
4: तो वो भी अभी हम लोग साथ में मिल के ही करेंगे और फिजी में भी जो है अभी काफ़ी बड़ा कम्युनिटी है फिजी का भी वो हमारे ही अपने भाषा में सब हम लोग बात करते हैं वो भी हमारे साथ अब ज्वाइन हो रहे हैं और हमारा ये जो हमारी आशा है इसी तरह हम सब की मदद से बढ़ती जा रही है और हम रुकेंगे नहीं अभी तो हम शुरुआत ही है और آپ سب لوگوں کا سہیوگ جس ملتا رہے گا تو ہم لوگ جتنا کر سکتے ہیں کرتے رہیں گے.
2: بالکل, کیونکہ آپ کا گروپ مجھے لگتا ہے
4: تو وہ بھی ابھی ہم لوگ ساتھ میں مل کے ہی کریں گے. اور فیجی میں بھی جو ہے ابھی کافی بڑا کمیونٹی ہے فیجی کا بھی, وہ ہمارے ہی اپنے بھاشا میں سب ہم لوگ بات کرتے ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ اب جوائن ہو رہے ہیں. اور ہمارا یہ جو ہماری آشا ہے اسی طرح ہم سب کی مدد سے بڑھتی جا رہی ہے اور ہم رکیں گے نہیں, ابھی تو ہم شروعات ہی ہے.

0: ले
1: अभी भी हैं जो हमारा जो फोकस है अभी भी आशा में डिमेंशिया का है तो पहली दफा हमने डिमेंशिया का जब हमने फोरम किया था तो लोगों को मालूम नहीं था डिमेंशिया होता क्या है
0: जी
1: डिमेंशिया के साथ स्टिग्मा अटैच्ड है हम लोग कहते हैं कि इंडिया में बचपन में हम सोचते थे ना कि सतरे बतरे हो गए
0: तो
1: बूढ़े में सबके सत्तर हो गए तो
0: सठिया गए हैं सठिया जाते हैं
1: तो एक मैंने जब बचपन में मैं सोचती थी दादी कभी वो पैदा ही बूढ़े होंगे कभी कैसे यंग होंगे तो बाद में अब समझ आती नहीं नहीं वो भी यंग थे तो ये बुढ़ापा जो है दो किस्म का होता है एक फिजिकल होता है एक मेंटली होता है कुछ लोग तो 40 साल में बूढ़े हो जाते हैं कुछ लोग 80 साल में भी जवान रहते हैं पर जो बॉडी है वो अगर आप फिट रखेंगे और मेंटल आपका स्वस्थ ठीक होगा तो आप 110 इयर्स तक भी जवान रहेंगे सो
0: आपका ग्रुप इतना ज़्यादा सक्सेसफुल है मुझे ये लगता है कि अगर कोई यंग कोई भी हो स्कॉलर हो यूनिवर्सिटी में कहीं कि आपके ग्रुप के ऊपर एक आर्टिकल लिखना चाहिए कि किस तरह से ग्रुप ने जो हमारे एल्डरली हैं हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको किस तरह से एक राह दिखाई है और उनके लिए एक नया जीवन शुरू किया है तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक आपका ग्रुप तो चल ही रहा है लेकिन उसके अलावा आई थिंक जस्ट एन एकेडमिक एक्सरसाइज कि वॉट आर द पॉइंट्स एंड हाउ हमारी जो जनरेशन यहाँ पे है किस तरह से हम लोग जो हैं डिवाइड कर रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स यहाँ आते हैं और उनके लिए कोई ऑक्यूपेशन नहीं है कोई उनकी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी नहीं है किस तरह आप प्रोवाइड कर रही हैं एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टॉपिक विच वी कैन थिंक अबाउट
1: ये तो बहुत अच्छा लगेगा डिमेंशिया के लिए आपको बताएं कि माइंड केयर का प्रोजेक्ट है लाटाबॉन यूनिवर्सिटी में नारी के साथ हमने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी
0: जी
1: और लास्ट ईयर पंकज भी हमारे साथ गए थे उसके एडवाइजरी बोर्ड में थे
0: जी
1: और बहुत गर्व से कह सकते हैं पहली दफा वन ऑफ द फोर्थ लैंग्वेज हिंदी में रिसोर्सेज बने हैं वो बुक हमारे पास है नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आपको लेके मे बी उसकी कॉपी भी बनवा देंगे तो रिसर्च में उन्होंने हिंदी स्पीकिंग लोगों का कैसे क्या क्वेश्चन करने हैं रिसर्च हुई है ऐसे ही डिमेंशिया ऑस्ट्रेलिया में इट्स डिमेंशिया नॉट ए डिस्ग्रेस जो वीडियो है अभी भी वेबसाइट पे है सीनियर राइट्स में दो शॉर्ट फिल्म है आशा के साथ बनी हुई हैं ये जो हैं रिसोर्सेज हैं और न्यू साउथ वेल्स मल्टीकल्चरल हेल्थ के जो भी इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन होती है उसको हम सपोर्ट करते हैं चेक करते हैं अगर उनको ज़रूरत है तो ट्रांसलेशन भी करवा के देते हैं ये जो बिहाइंड जो चीज़ें होती हैं पॉलिसी मेकिंग में जितना भी हो सकता है हम इनपुट करते हैं और मैं रीजनल जो मल्टीकल्चरल कमेटी है उसके अंदर भी हूँ तो हमेशा सीनियर्स का अपने लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाते हैं ये तो है जो बैकग्राउंड में करते हैं अब एक्टिविटीज़ की बात है एक्टिविटीज़ में ग्रुप में जब लोग आते हैं पहले तो तैयार होते हैं कहीं जाना है
0: बिल्कुल
1: उठेंगे फिर चल के आएंगे स्टेशन पर आएंगे वॉक करेंगे दूसरों से मिलेंगे वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सरसाइज होती
0: बिल्कुल,
1: है चाहे योगा हो जाए चाहे बॉली फिट हो जाए डिपेंडिंग ऑन द रिसोर्सेज फिर उनको मिलके चाय एंड चैट होती है उनको फिर गाने का मौका मिलता है सुनने का मौका मिलता है एक्टिव हो जाते हैं और छोटी छोटी कम्युनिटीज बन गई हैं वो नॉर्थ शोर में वहाँ पे मोस्मन के पास के और वहाँ भी एक ग्रुप बन गया है और जो डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं एक दूसरे मिलके फिर बाद में मिलते हैं पार्क में मिल गए
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो आसपास जितने हमारे ग्रुप हैं उन लोगों की अपनी कम्युनिटीज बनती जा रही हैं
2: बड़ी अच्छी बात है पंकज जी आप कुछ कहना चाहते थे
3: मैं ये कहना चाहता था कि हमारा जो बोर्ड है आशा हमारी आशा का उसमें विजिंदर जी की जो सोच है जो उनकी दृष्टि है वो सिर्फ इतने तक ही नहीं है इन्होंने अभी मिनिस्टर से भी बात करके जो हमारा नया एयरपोर्ट बन रहा है वेस्टर्न सिडनी में उसमें जो भी हमारे सीनियर्स लोग आते हैं कुछ लोग हिंदी बोलते हैं अपनी भाषा में बोलते हैं लेकिन उनको इंग्लिश पढ़नी भी नहीं आती तो उनके लिए बजिंदर जी ने मिनिस्टर से बात करके भी अप्रूवल भी लिया है कि जो साइनेज होएगी कि किस जगह जाना है जब आप एयरपोर्ट में उतरेंगे तो उसकी साइनेज भी अब अपनी भाषा में वो इंस्टॉल होएगी एयरपोर्ट में तो बजिंदर जी ने मिनिस्टर से अप्रूवल लेके वो इनकी मतलब दृष्टि ये सिर्फ यहाँ ही तक नहीं कि सीनियर्स के लिए उनको कहाँ कहाँ सुख मिल सकता है उसमें भी बहुत कर रहे
2: हैं बहुत अच्छी बात है पंकज जी आप घर पर क्या भाषा बोलते हैं
3: मैं घर पर क्या होता है कि जो मेरे साथ में होता है मैं उसको देख के बातें करता हूं
2: नहीं वैसे वैसे